0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ।
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ।
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ।
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग कोई भी पत्रिका अखबार मतलब जो भी मिल गया, हाँ। वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मैं जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ पूजा को, हृदय

0: सुंदर बनाया है
1: क्या बात
0: बहन लो प्यार का गजरा बहुत सुंदर बनाया है पधारो माँ पूजा को पधारो माँ पूजा को।

0: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुंच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते, पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में, ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक, जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
1: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद हैं
0: जी,
1: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियाँ लिखी है, तो मुझे वो बहुत टच कर भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक, ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है,
0: हाँ।
1: तो वो भी साहित्यिक में बहुत
0: अच्छा रुचि
1: रखती हुई है, बहुत ज्यादा, हाँ
0: अच्छा।
1: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे को उसमें मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ,
0: हाँ।
1: जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था
0: जी,
1: वॉकिंग डिस्टेंस पे,
0: हाँ।
1: तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी,
0: हाँ।
1: वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना,
0: हाँ।
1: तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मेरे को रोना आता था,
0: अच्छा।
1: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा,
0: हाँ हाँ।
1: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी,
0: अच्छा।
1: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया,
0: हाँ।
1: मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है
0: जी।
1: फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी,
0: अच्छा,
1: फेसबुक पर, अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी,
0: अच्छा।
1: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई,
0: हाँ।
1: तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ,
0: हाँ।
1: तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई,
0: हाँ।
1: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना, तो सबको अच्छी लगती थी,
0: हाँ।
1: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है,
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं।

0: जैसे कि ये दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें। फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
1: अच्छा,
0: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया।
1: जी, आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM। और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है। और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसकी हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाडली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है। हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडम्बना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है। ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे। बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे, हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह, यस वेरी नाइस। अभी ये कविता है तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उसमें भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हैं। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार
1: मनाते थे
0: जी।
1: होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना खिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था। तो इसी तरह से एक बार हमने बुलाया हुआ था सबको और मैंने उन्हीं लेडीज के ऊपर एक कुछ छोटी सी कहानी
0: अच्छा
1: सुनाई और वो मेरी फिर अमर उजाला अखबार में
0: क्या बात
1: निकली
0: है? हाँ.
1: निकली तो फिर लोगों को पता लगा कि आप लिखती भी हो. क्या होता है ना, हम लिखते तो हैं
0: हाँ.
1: लेकिन हमारी जो हमें उत्साह जो मिलता है वो और उसे मिलता है
0: जी,
1: जो पढ़ते हैं
0: हाँ.
1: जब हमारा उत्साह वर्धन होता है ना तो हमारा और इच्छा करती है हाँ शायद हमने कुछ अच्छा लिखा
0: अच्छा
1: है,
0: लिखा है
1: कुछ और इससे भी अच्छा करके दे.
0: हाँ.
1: तो बस इसी तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे मेरा लिखने का शौक बना. फिर और मैं जिस परिवार में से दूसरे परिवार में गई थी तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था. तो वहाँ क्या होता था मतलब बहुत सिंपल बहुत अच्छे लोग हैं हमारे
0: हाँ.
1: वो भी लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
0: जी.
1: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे थे.
0: अच्छा.
1: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे
0: हाँ.
1: मेरी सेवा को देखते थे तो धीरे धीरे मेरी उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना
0: हाँ.
1: वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे. मैं आपको वो किस्से में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ
0: हाँ.
1: फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया
0: जी.
1: तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा. जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है. तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई उत्साहवर्धन हाँ. हुआ. फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है
0: जी.
1: मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है
0: हाँ.
1: तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए आप लिखोगी आप लिख सकते हो
0: जी.
1: फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे
0: हाँ.
1: शब्दों के कैनवास में
0: अच्छा,
1: छपी
0: हाँ.
1: इससे पहले क्या था ना छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही
0: हाँ,
1: थी
0: हाँ.
1: एक जैसे ये है
0: आखर लुकता हाँ.
1: इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी
0: अच्छा.
1: तो उसमें एक बार ये कविता निकली एक बार वो मेरी कहानी निकली
0: अच्छा.
1: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
0: जी. अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे.
1: वो क्या था ना मेरे अंदर ना ये शुरू से सेवा का भाव था.
0: अच्छा.
1: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
0: जी.
1: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर का. तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है मेरे को जो है
0: पढ़ना है
1: लॉ करना है.
0: अच्छा.
1: मुझे आगे लॉ करना है
0: हाँ.
1: तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ सब हो गया.
0: अच्छा.
1: बस अब क्या और क्या करना है. मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है.
0: अच्छा.
1: तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा विदाउट पे करनी है तो
0: हाँ.
1: पास में एक स्कूल था छोटा सा
0: हाँ.
1: और उसमें मैं जाने लगी. वन
0: अच्छा.
1: मंथ मैंने पढ़ाया
0: हाँ.
1: अब उसमें जो था एक बच्चा भी था तो वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ. मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए.
0: अच्छा.
1: हाँ. वो घर आने लगा मैंने उसको पढ़ाया
0: हाँ.
1: उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए
0: हाँ.
1: कुछ नहीं वो हो गया मेरी शादी भी हो गई
0: हाँ.
1: 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी.
0: अच्छा.
1: कि हेलो दीदी बोल रही है. मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं. मैं राजू बोल रहा हूँ. मैंने कौन राजू.
0: हाँ.
1: अरे दीदी आप भूल गई मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर पे बैठ के पढ़ाती थी आप.
0: अच्छा.
1: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ आया है नौकरी कर रहा हूँ बेंगलोर में मैं हूँ.
0: क्या बात है.
1: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से
0: हाँ.
1: तो ये मेरे को ना शुरू से था
0: हाँ.
1: और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था
0: हाँ.
1: जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध
0: हाँ.
1: का गाय वगैरह रखते थे
0: हाँ.
1: तो वो जब लेते थे उनसे
0: हाँ.
1: तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी. उसके बच्चे थे तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे. तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं. मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी.
0: अच्छा.
1: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया
0: हाँ.
1: कि उसने 12th पास किया.
0: क्या बात है.
1: और मतलब वो अपनी लाइफ में
0: सेट
1: शादीवादी हो गई
0: हाँ.
1: सेट हो गई
0: जी.
1: तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी. अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से
0: हाँ.
1: स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
0: हाँ, काम करते थे
1: हाँ. तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी
0: हाँ.
1: घर में रह के क्या करोगी. ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे सारे दिन तुम बिजी रहोगी परेशान हो जाओ. मैंने कहा जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर हाँ, वो इसमें खुश है हाँ, वीआरएस लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
0: जी।
1: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें
0: हाँ,
1: क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
0: बराबर,
1: बच्चे हाँ, भी बड़े हो गए अपनी नौकरी हाँ, चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ
0: हाँ,
1: तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
0: अच्छा,
1: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, आरएसएस के लोग थे
0: जी।
1: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए
0: हाँ।
1: मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
0: जी।
1: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी हाँ, ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए हाँ, हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
0: ठीक है,
1: वहाँ गए, वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी, फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
0: अच्छा,
1: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इन पे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
0: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
1: क्योंकि क्या है ना
0: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
1: क्या है ना पेशेंट्स जो है मुझे लगता है कि वो
0: डिप्रेशन
1: से नहीं जाता
0: हाँ,
1: वो सोच कर चला जाता
0: है जी।
1: फिर हम लोग की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास लगती थी कि उनको साथ हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी
0: हाँ, उनका दुख दर्द देख
1: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे उन लोगों ने, समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है
0: हाँ,
1: आपको यही छोड़कर जाना होगा
0: हाँ,
1: यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
0: जी।
1: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, और आप पढ़ जाओगे क्या फायदा है।
0: बराबर।
1: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको, स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए
0: हाँ।
1: तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
0: राइट हाँ।
1: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था
0: हाँ।
1: गिरे ना कहीं
0: जी।
1: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था ये लोग कैसे
0: रहते हैं,
1: हम इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं, हमको ये परेशानी
0: जी,
1: वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
0: अच्छा,
1: 35 शालाओं का निरीक्षण था, तो जो हम लोगों को हम मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे। बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
0: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
1: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
0: राइट हाँ।
1: तो वो भी
0: करते हैं।
1: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था
0: बराबर,
1: और आके बस आराम
0: से
1: सोते थे
0: हाँ।
1: मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
0: कुछ तो किया
1: तो हुआ।
0: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है,
1: ठीक जी, थैंक यू।
0: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
1: आप बताओ।
0: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
1: हाँ, जिंदगी
0: के बारे में सुनते हैं,
1: कर लेती छोटा सा है।

0: जी
1: चलेगा
0: चलेगा या
1: जिंदगी, जिंदगी है तो सब कुछ है, लिखी है ना
0: जी
1: जिंदगी। इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
0: जी बिल्कुल।
1: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी ये धूप ये दिन ये रात कल भी आई थी
0: आज भी आई है
1: कल भी आई थी और आज भी आई है। किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा। इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
0: क्या बात।
1: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस तरह किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई जिंदगी मैं तेरे लिए
0: प्यार लाई हूँ। क्या बात।
1: नई आशा नए सपने नए संकल्प मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ। मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ जिंदगी तेरे लिए
0: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है। कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90FM से आप जुड़े हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। गांव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और खास करके गांव की नदी, वो नदी जिससे न जाने हमारे कितने बचपन के सपने जुड़े होते हैं, कितनी कहानियां जुड़ी होती है। जब हम परेशान हो जाते हैं तो नदी किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। कभी अगर एक्साइटेड होते हैं तो उसी नदी में डुबकी लगाते हैं और स्विमिंग करने लग जाते हैं। तो गांव की नदी से एक खास रिश्ता जरूर होता है। तो ऐसी कहानी एक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, नदी के पार वाला सपना। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भवानीपुर में सुबह का मतलब अलार्म नहीं होता था। सुबह का मतलब होता था मुर्गे की आवाज, कुकड़ुक्कू, सुबह 4:30। मिट्टी की खुशबू और दूध वाले के बर्तनों की खनक, और साथ ही साथ वही गांव में रहते थे केशव और उसकी पत्नी गंगा। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छत पे पुराने टीन के पत्रे और आंगन में एक नीम का पेड़। पर उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो थी प्यार। केशव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस 3री तक स्कूल गया था। उसके बाद पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। अब वो गांव के मंदी में बोरिया उठाता था, कभी किसी के खेतों में हल चलाता था, कभी ट्रैक्टर चलाता था। महीने के मुश्किल से 15,000 रुपए कमा पाता था। और गंगा भी अनपढ़ी थी, नाम लिखना तक नहीं आता था, पर दिल समंदर से भी ज्यादा बड़ा था। वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, पहले चूल्हा जलाती थी, फिर पानी भरने को किलोमीटर तक दूर कुएं तक जाती थी, कपड़े धोती थी, बकरियों को चारा देती थी और शाम तक घर संभालती थी। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक चीज थी जो गंगा को रोज नोटिस होती थी, केशव का थका हुआ चेहरा। रोज सुबह वो साइकिल लेकर मंडी जाता था। मंडी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर थी। चाहे बरसात हो या हो फिर गर्मी या सर्द हवा, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, कि चाहे कितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, केशव साइकिल चलाता ही रहता। और कई बार उसकी साइकिल रास्ते में खराब भी हो जाती थी, कभी चैन टूट जाती, कभी टायर पंचर हो जाता। एक बार तो तेज बारिश में वो गिर भी गया था। उस दिन रात को गंगा ने उसके पैर दबाते हुए पूछा था, बहुत दर्द हो रहा है क्या? केशव मुस्कुरा दिया, अरे पगली, आदमी का शरीर काम करेगा तभी तो घर चलेगा। पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे की थकान गंगा देख चुकी थी।

रात गंगा ने पहली बार एक सपना देखा, अपने पति को बाइक पर बैठकर हंसते हुए देखने का सपना। अगली सुबह केशव मंडी चला गया, गंगा रोटियां बना रही थी, तब उसकी नजर पुराने स्टील के डब्बे पर पड़ी। उसने डब्बा उठाया, साफ किया और धीरे से बोली, इसमें जमा करूंगी पैसा। उस दिन से उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो केशव को एक बाइक गिफ्ट करके रहेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 15,000 में राशन, बिजली, दवाई, कपड़े, ये सब कुछ मैनेज करना मुश्किल था। लेकिन गंगा ने ठान लिया था, उसने खुद पर खर्चा करना भी कम कर दिया था। नई साड़ी बाद में ले लेंगे, मेला जाना बंद, चूड़ियां भी बाद में ली जाएगी। कभी कभी तो वो अपनी चाय में चीनी कम डाल देती थी ताकि 1-2 रुपए बचा सके। केशव को कभी पता नहीं चला, हर महीने वो किसी ना किसी तरीके से 2,000 रुपए बचा लेती, कभी दूध बेचकर, कभी दूसरों के घर पापड़ बनाकर, कभी सिलाई करके, और वो पैसे छुपा देती उस स्टील के डब्बे में। हर बार पैसा डालते वक्त वो डब्बे को हाथ लगाकर बोलती, एक दिन मेरा केशव बाइक पे जाएगा, साइकिल पे नहीं। समय धीरे धीरे गुजर गया, 3 साल बीत गए। पूरे 3 साल तक गंगा ने हर महीने पैसे बचाए। कभी बुखार, कभी सर दर्द, इन सारी हालतों में काम किया। कभी कभी भूखी भी सोई। एक बार केशव ने कहा भी, गंगा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? वो हंस पड़ी, बस थोड़ी थकान है। उसने कभी सच नहीं बताया। एक दिन गांव में मेला लगा, सारी औरतें सज धज कर गई, चंदा भी गई। चंदा गंगा की सबसे अच्छी दोस्त थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, गांव के लोगों के लेटर्स भी वो पढ़ती थी। चंदा ने पूछा, तू मेला नहीं आएगी? गंगा ने झूठ बोला, मन नहीं है। असल में उसके पास पैसा था, पर वो पैसा उसके सपने का था। उस रात जब केशव सो गया, गंगा ने डब्बा खोला, उसने धीरे धीरे पैसे गिनने शुरू किए। 72,000 रुपए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस थोड़ा और फिर मेरे केशव की बाइक आ जाएगी। फिर मेरा केशव बाइक पर बैठकर सारा गांव घूमेगा, अपने काम पर जाएगा, मुझे अपने बाइक पर पीछे बिठाकर मेला घुमाने लेके जाएगा। न जाने ऐसे कितने सपनों में गंगा खो गई। सो दोस्तों, गांव की कहानियां कितनी प्यारी होती है, कितनी सिंपल होती है, कितनी सरल होती है, लेकिन इन कहानियों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत उस किरदार को उठानी पड़ती है जो कहानियों को जीता है। तो इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे हम इस ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूँ आपका आचार्य 90 FM में। हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना और हमने देखा और हमने सुना कि कैसे गंगा ने 72,000 रुपए बचा लिए अपने केशव के लिए। और अब देखते हैं कि किस तरीके से गंगा केशव को बाइक गिफ्ट करेगी। उसी गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था अजय। अजय थोड़ा गलत व्यवहार वाला लड़का था और लोगों गलत लोगों के साथ रहकर वो चोरी चकारी शराब पीना जुआ खेलना कर्जा न जाने कितनी कितनी चीजों में फंसा हुआ था। उसने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, गांव वाले उससे दूर रहते थे। एक दिन वो रात को शराब के नशे में घूम रहा था, तब उसने गंगा को स्टील का डब्बा छुपाते हुए देख लिया। अजय की नजर पैसे पर पड़ गई। उसने सोचा लगता है काफी पैसा है। उस रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था डब्बा। उस रात तेज हवा चली, केशव थककर गहरी नींद में था, गंगा भी सो गई थी। आधी रात को अजय धीरे से घर के पीछे अंदर घुसा। उसने चूल्हे के पास मिट्टी हटाई और उसे स्टील का डब्बा मिल गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक धक धक धक धक कर रहा था। बस एक बार ये पैसा मिल जाए। वो डब्बा लेकर भाग गया। सुबह गंगा ने जैसे ही डब्बा चेक किया, उसकी सांसें रुक गई। डब्बा गायब था। पहले उसे लगा शायद कहीं और रखा होगा। उसने पूरा घर उल्टा दिया, आंगन छान लिया, चूल्हा भी पूरी तरीके से खोद दिया, बिस्तर पलट दिया, सब कुछ कर लिया, पर डब्बा नहीं मिला। उसके पैर कांपने लगे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी। पर उसी वक्त केशव घर के अंदर आ गया। गंगा तुरंत आंसू पहुंचने लगी और चुप हो गई। क्या हुआ, केशव ने पूछा। कुछ नहीं, गंगा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तू रो रही है, केशव ने बोला। नहीं, मैं नहीं रो रही, गंगा ने जवाब दिया। केशव ने उसका माथा छुआ। तबीयत खराब है क्या, गंगा बस झूठी मुस्कान देकर रह गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया दिल टूटने की आवाज सच में होती है। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गंगा चुपचाप घर से निकली। उसके पैर सीधा गांव के बाहर वाली नदी की तरफ बढ़ने लगे। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में बैठा करती थी। नदी के पास पहुंचते ही वो टूट गई। वो इतनी घुटन भरी थी उसके अंदर कि जैसे वो नदी के पास पहुंची, वो जोर जोर से रोने लगी। नदी माँ, मैंने क्या गलत किया, उसकी आवाज हवा में घूमने लगी। तीन साल तक मैंने पैसे जोड़े, मैं बस अपने पति को खुश देखना चाहती थी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस एक बाइक देना चाहती थी उसको मैं। वो रोते रोते ये सारी बातें बोलती गई। मैं उसे एक तोहफा देना चाहती थी, पर सब खत्म हो गया, सब बिखर गया। उसे नहीं पता था कि गंगा जब ये सारी बातें कर रही थी, कुछ दूर पेड़ के पीछे अजय खड़ा सब सुन रहा था। उसके हाथ में वही डब्बा था और पहली बार उसे अपनी चोरी पर शर्म आ रही थी। अजय चुपचाप गंगा की बातें सुनता रहा। हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसने डब्बा खोला, अंदर साफ सुथरे नोट थे, कुछ पुराने कुछ नए, और एक छोटी सी कागज की पर्ची।
उस पर गंगा ने अपनी तरफ से कुछ बना रखा था, एक आदमी, एक बाइक और उसके पास दिल का निशान। अजय की आंखें भर गई। उसे याद आया कि उसकी माँ भी उसके लिए पैसे बचाती थी और आज वो दूसरों की उम्मीद चुरा रहा था। नदी के किनारे गंगा अब भी रो रही थी, भगवान बस मुझे मेरा सपना दे दो, मुझे मेरा सपना लौटा दो। अजय का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैं कितना गिर गया हूं। उस रात उसने पहली बार शराब की बोतल फेंक दी। रात गहरी हो चुकी थी। केशव घर के बाहर बैठा था, गंगा का इंतजार कर रहा था। तू इतनी देर तक कहां थी, केशव ने पूछा। गंगा ने झूठ बोला, आप चंदा के घर थी। केशव ने कुछ नहीं पूछा। रात को दोनों सो गए और आधी रात अजय फिर उस घर के पास आया, पर इस बार चोर बनकर नहीं, पछताया हुआ इंसान बनकर। उसने धीरे से वही डब्बा उसी जगह वापस रख दिया और उस 72,000 रुपए के साथ उसने उसमें कुछ अपने पैसे भी रख दिए, लगभग 15,000। उसने एक कागज निकाला, उस पर लिखा, माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया, पर आपका प्यार देखकर समझ गया कि गरीबी से बड़ा गुनाह इंसानियत खोना होता है। अजय ने नोट डब्बे के नीचे रख दी और चुपचाप चला गया। अगली सुबह को क्या हुआ, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आ रहा है एक ब्रेक और हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि अजय ने वो डब्बा फिर से वहां वापस लौटा दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ तो चलिए देखते हैं। अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह गंगा ने आदत से डब्बे वाली जगह देखी और उसकी चीख निकल गई, हे भगवान! डब्बा वापस था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत डब्बा खोला। पैसे भी थे और पहले से ज्यादा थे। उसकी आंखें भर गई, आंसू गिरने लगे। ये कैसे हुआ? फिर उसकी नजर कागज पर पड़ी, पर वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकती थी। उसने कागज संभाला और सीधा चंदा के घर भागी। चंदा, चंदा, चंदा बाहर आई। चंदा, ये पढ़ना, इस पे क्या लिखा है? चंदा ने कागज लिया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो वर्ड्स बोलती गई, गंगा की आंखों से आंसू बहते गए। माफ कर देना बहन, मैंने पाप किया। मैं पैसे ले गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर समझ गया। चंदा ने पढ़ना रोका। गंगा, तेरा पैसा किसी ने चुराया था क्या? गंगा चुप हो गई। उसने नोट को अपने सीने से लगा लिया। भगवान उस इंसान को सही रास्ता दिखाए। बस ये कहकर गंगा अपने घर आई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई बाइक आई, काली चमकदार बाइक। केशव ने दूर से देखा और बोला, वाह क्या बाइक है। तभी गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल। किधर चल? अरे बस चल। और दोनों बाइक के पास चले गए और गंगा ने कहा, अब आंखें बंद करो। केशव ने आंखें बंद की और गंगा ने धीरे से उसका हाथ आगे खींचा और केशव के हाथ में रख दी उस बाइक की चाबी। केशव हैरान, ये क्या है? तुम्हारी बाइक। केशव हंस पड़ा, पागल है क्या? नहीं, सच में तुम्हारी बाइक है। कहां से आई ये बाइक? गंगा ने मिक्स्ड इमोशन वाली आवाज में कहा, 3 साल से पैसे जोड़ रही थी केशव। केशव चुप हो गया। दोनों के आंखों में आंसू थे, खुशी वाले थे या गम वाले थे इसका पता नहीं, पर इतना जरूर जानता हूं कि दोनों बहुत खुश थे। तू मेरे लिए? गंगा मुस्कुराई। तुम रोज साइकिल पे इतना दूर जाते थे ना? केशव ने तुरंत उसके पैर छू लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? केशव ने जवाब दिया, तू मेरी पत्नी नहीं, तू मेरी ताकत है गंगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मुझे और मेरे बारे में इतना कुछ सोचती है। और पहली बार उस वक्त केशव ने गंगा से 5 साल में पहली बार कहा, आई लव यू। उस दिन दूर से अजय सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया था कि इंसानों के पैसे नहीं, इंसानों को नियत से अमीर होना होता है। कुछ दिनों बाद अजय ने चोरी छोड़ दी, गांव के मैकेनिक के पास काम शुरू कर दिया। लोग उस पर पहले भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन केशव बाइक सर्विसिंग के लिए गया उसी गैरेज में जहां अजय काम करता था। अजय ने बाइक पहचान ली, वही बाइक जिसके लिए एक औरत ने 3 साल सपना देखा था। अजय की आंखें भर गई। केशव बोला, क्या हुआ? अजय हल्का सा मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं भैया, बस बाइक बहुत खास है। ये कहकर अजय अंदर चला गया। एक शाम गंगा फिर उस नदी के पास गई, पर इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने पानी को देखकर कहा, उस दिन मैंने दर्द बताया था, आज खुशी बताने आई हूं। हवा धीरे से चली, जैसे नदी भी मुस्कुरा रही हो। दूर केशव बाइक लेकर आ रहा था। गंगा! वो हंस पड़ी और भागकर बाइक पर बैठ गई।
केशव ने पूछा, कहाँ चले? गंगा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ सपने पूरे होते हैं। बाइक धीरे धीरे मिट्टी के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी और पीछे पीछे नदी की लहरें चुपचाप एक कहानी सुना रही थी कि सच्चा प्यार कभी चोरी नहीं होता, वो तो और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हम सुन रहे थे नदी के पार वाला सपना, एक ऐसी कहानी जहां केशव और गंगा एक पति पत्नी हैं। एक पत्नी ने अपने पति के लिए एक सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए उसने दिलो जान से मेहनत की। उम्मीद है कि ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल में भी होती होंगी, पर शायद हम कभी उसे देखते नहीं या महसूस नहीं कर सकते, या कभी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों को हम नज़रअंदाज करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि किसी की छोटी से छोटी मेहनत भी उस इंसान के लिए क्या मायने रखती है। तो बस आज के कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगली बार ज़रूर मिलेंगे कुछ अच्छी कहानियाँ लेकर जो आपके दिल को छुए। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्टन दोस्त RJ शब्बीर साइनिंग ऑफ।

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपने कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिस वारसी। मोनिस जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करें तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिस जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिस जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एज इन एकदम से लिखता तो मैं शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर।
0: करेक्ट।
1: जिस चीज का उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते हैं ना एक स्पार्क की जरूरत होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, कलम लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने आपको किसी और मोड़ पर या किसी और मोड़ को चूज ना करते हुए सिर्फ लिखने की ओर मोड़ा?
1: लोग शब्द हम कलम का सहारा लेते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता।
0: करेक्ट।
1: कि हम क्या फील कर रहे हैं, वो आदमी हमें मिला या वो इंसान हमें मिला तो हम कैसा फील कर रहे हैं।
0: करेक्ट।
1: उस चीज को बायकॉट करने के लिए या बाईपास करने के लिए हम कलम उठाते हैं।
0: हाँ।
1: शायरों में यही होता है कि हम जो फील कर रहे होते हैं वो नहीं बता सकते, तो जो पॉसिबल चीज है, जो एक उस फीलिंग को टच कर सकती है, उस चीज को आपको, ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि आप भी, लोगों को शायद ना पता, मुझे मालूम है कि आप भी लिखते हैं, तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेर व शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज एक्सप्लोर करने में टाइम लगे या हो सकता है मैं भी कभी ना जानूं, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते ही हैं। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज है, तो उसकी कोई
0: तुलना नहीं है।
1: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
1: मेरा मैंने लिखा था एक
0: मेरा। हाँ।
1: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला ही मैंने लिखा था मीरा। एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा पड़ा हुआ मीरा, तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं। मीरा जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ गए हैं।
0: करेक्ट।
1: डायमेंशन शायद इश्क का ही है।
0: और तो शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा।
1: वो तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
0: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिख कर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
1: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं जानता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को ये मुझे मालूम है। और एक आशिक के लिए जानना इतना काफी, मुझे अच्छा लगा ये चीज और वो मुझे हमेशा से पसंद है। जब मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तभी से वो मेरे मन में।
0: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान मेरे प्रीतम मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
1: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए एक शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: अगर ये बात है असरार तो तेरा शहर कभी महफूज है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो मैंने मीरा को नजर में रख के ये शेर लिखा था मैंने कि जब सेल्फलेस चीजें हैं ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम है, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है उतना ही सेम है, उसी जगह पर वो शिफ्ट नहीं होता है दूसरे जगह, वो वहीं पर जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे सचिन हो चाहे मनीष हो उसको जाना उसी दरवाजे से तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
0: मद्देनजर रखते हुए
1: कि किसी चीज की जरूरत नहीं।
0: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम का खत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे प्रेम को छोड़कर?
1: मैं कहूँगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है जैसे आपने कहा कि सब हार गए
0: जो जीत गए वो कृष्ण हुए जो हार गए वो मेरा,
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूँ लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए,
0: करेक्ट,
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया, बोले तू कुछ है ही नहीं, तितर बितर,
0: करेक्ट,
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा, बोनस कैश और बिल क्या, कुछ नहीं, तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही,
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार कि किसी के लिए हम हार जाए, प्रेम उसी में है जहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी, तो मेरा को सेटिस्फेक्शन है जब कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे, कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: क्यों नहीं होगा, हम और आप किसी न किसी दौर में किसी न किसी जमाने में, अभी दुनिया में इतनी नफरतें हैं, हम और आप बैठे बात कर रहे हैं और इस बारे में इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी को कि कोई दो लोग बैठ के आज के दौर में मीरा की बात करेंगे, तो ये तो बहुत ही ज्यादा संभव है। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट
0: है,
1: तो किसी न किसी वर्ल्ड में तो कृष्ण भी मीरा के आशिक होंगे।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
1: अब इसके बारे में हमें
0: वो तो जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल
1: है। इश्क का रियल शब्बीर भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, चलते रहता है। लोगों को लगेगा कि अब अरे ये तो महबूब की पहले से तारीफ कर रहा
0: था,
1: ये तो चलते रहेगा। ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो, कुछ अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूँ या रहने तू, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूँ क्या रहने तू।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़के देखने में भी
0: तकलीफ है
1: तुझे, तो बता तेरे वादों का एतबार करूँ या रहने दू, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूँ क्या रहने
0: दू। वाह वाह वाह,
1: ये भी एक रेंज है। मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी पेडेस्टल पे हमें तौलना नहीं
0: है, आशिक
1: कभी ऊपर भी रहेगा
0: कभी नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है। ऐसे ऐसे अशआर आदमी लिख देते हैं, लगे देते हैं ये तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बनाई है प्यार को,
1: महबूब को गाली नहीं दे सकता, आशिक होगा तो किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। इसलिए मैंने मीरा से ही आप पहले कबूल कराया भी,
0: लेकिन यही एक चीज है, आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं, कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूं, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो मैं देखता हूं, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती है ये कि उसको, उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि शायर जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो मैं मतलब इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे, मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत तेरी, फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिया, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क कर रहा हूँ।
0: वाह वाह,
1: और वो इश्क पहुंचता है, मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हैं तो सामने वाला भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज का जो है, आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिस्मों तक ही सीमित है, वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
0: जी सर, अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
1: फिर
0: कुछ
1: भी फिर भी।
0: ऐसे ही एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने, ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े, लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को दबा कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी है, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें है, 4 दीवार है जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
1: जो साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए क्या कहा मुझसे मिलने आए हो बैठो बुलाकर
0: बताता हूँ। वाह वाह वाह वाह।

0: तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, ये अब इसको मैं इलैबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलैबोरेट करेगा बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
1: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और
0: मलाल भी नहीं। और मलाल इसीलिए इसको आदमी दूसरे, मतलब आज के लोग शायद दूसरी तरीके समझे, मतलब मेरा ग्लास सिर्फ इश्क है मेरा, मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ। तो जो मिर्जा साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा, मुझसे मिलना है तो बैठो बुला के लाता है, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य, एक थोड़ा फोकलोर हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया, तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले कैस, तो बोले जा। फिर दोबारा आए कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, बोले कैस, बोले वापस जाओ। फिर तीसरी बार जब आए वो, तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं। तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली। कि ये मैं ये चाह रही थी, तू कौन, मैं कौन हूँ, यूनियन का नाम इश्क है।
1: किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक सीमित एक हो जाना,
0: दो लोग एक। जैसे हम लोग अभी देखते हैं विवाह, कहते हैं दो रूहों का मिलन है, तो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं। ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो चाहे हिंदू कल्चर हो कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो। तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वाक्य और बताता हूँ आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है। कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने के लिए, बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में। मैंने ऐसा सुना है और मेरे एक टीचर को बताया करते थे। तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि अब खोलो। तो राधा ने देखा कि सामने एक और राधा
1: खड़ी है।
0: किससे करूं, तू ही तो है, मैं ही तो हूं। तो इस लेवल का अगर यूनियन है, जो कि मतलब अभी तो
1: इसके बारे में सोचना भी
0: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो, मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
1: करेक्ट।
0: एक टॉर्च का फोकस अगर 10 mm का है, तो उसके 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक एलईडी का फोकस अगर 1 किलोमीटर तक है, तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। तो इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
1: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो, हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं, और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
0: मैं मतलब लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है। आदमी कभी कभी, मैं जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरी उर्दू थोड़ी अच्छी ग्रिप है उर्दू पे, मगर उतनी भी अच्छी नहीं। तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखेगा जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम मेरे कम से कम 100-200 शेर तो आधे मतलब एक एक लाइन के पड़े,
1: सिर्फ एक मिसरा लिखा है। उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
0: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे। तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए। तो बहुत बार हुआ
1: सर। राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
0: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा। तो कुछ ऐसा ही है, मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मैं डिफाइन कर पाऊँ। आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉक तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी है 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखता।
1: हाँ, दो तीन छह महीने मैंने नहीं लिखा।
0: तो ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ होता है। ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया है, हम मतलब भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखना तभी मजा आता है कि भाई वो जब दिल से निकले चीजें, तो वो शूटिंग भी दिल से,
1: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ नाजिल हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे अपने यार ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, और हो गई पूरी कविता हो गई एक मिनट के भीतर पूरी।
0: हाँ,
1: फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करता। हाँ, लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने आपको। हाँ, कि आप परेशान है तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ होया है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
0: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, उसकी भी एक गिजा है। तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से, जब वो भूख लगती है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है, तो वो पढ़ लिए, या वो लिख दिए कुछ ऐसा, लिख दिए कि पढ़ लिए, तो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
1: कुछ शेयर बहुत, हाँ, वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते हो किसी को।
0: तो वो होते हैं, वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहे ज्यादा बेहतर।
1: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई जाती है, अरे क्या लिख दिया मैंने,
0: एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मगर हम पढ़ दूंगा। आपको मालूम है बोला शेर, मैंने आपको सुनाया लिखा
1: इरशाद।
0: कई चराग है रोशन, कई चराग है
1: रोशन,
0: बस उनकी जस्तजु से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां।
1: वाह वाह वाह,
0: तेरी ही जात थी अब तक। मैं इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को, ताकि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजू से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से, मगर असरार मेरा पेन नेम है सो, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाया उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना मतलब डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से,
1: यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, लेकिन सब हाथ दूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बस ऐसे बैठ के ना नदी को देखते हैं,
0: नदी की धारा देख रहा
1: हूँ, बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, तो मैं आप जब ये शेयर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ,
0: कोई तो है कि नदी सोचती है कि
1: मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अगर पीने से इन लोग इतने खुश है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए, सब लोग ने इश्क लुटाया आपके महबूब ने, आपके महबूब ने सबको इश्क बांटा, उसके पास तो इतना इश्क है कि उसने सबको बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा, मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो नहीं कर
1: रहा।
0: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था, अब शायद थोड़ा मटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जानना चाहिए था, मगर
1: लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान कि यार मैं क्या करूं,
0: आंख से आंख मिल गई उनको,
1: एक बार वो देख ले, उसमें पूछ रहा बस, उसमें पूछ
0: रहा, जैसे मैंने इस पे भी एक शेर लिखा था, निगाह है यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार जब से देखी हमने होश में
1: आ हा हा वाह वाह वाह
0: जब से देखा हमने होश में आया ही
1: मैंने भी एक शेर लिखा था
0: मैं ऐसा,
1: मैं ऐसा ऐसा बैठा हुआ था तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है खुदा का देखना मेरी तरफ तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है
0: इश्क तो प्यूरेस्ट फॉर्म में
1: हाँ तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर मैं बोला हाँ वो मोमेंट था मेरे लिए कि आ हा हा क्या क्या हो गया मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे है ना
0: बिल्कुल
1: है ना तो वही तो आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजें कि आपने लिखा रात में उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को और मतलब सिर्फ तारीफें लूटनी है और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया
0: ऐसा होता है जरूर
1: हाँ
0: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे गुरु जी बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है पर सेकंड उसकी जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी है जो उसके जो इमिट हो रही है उसकी बॉडी से उसकी फीलिंग से उसके इमोशन से वो चेंज होते हैं अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: क्योंकि इश्क जो है हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है नहीं इश्क फ्रीडम देता है इश्क अब वो इश्क है ही नहीं जो एक दूसरे को ग्रो ना करवा पाए वो इश्क नहीं कि जो एक दूसरे को कब्जा रखे एक दूसरे को टोके एक दूसरे को ये करे नहीं इश्क जिस चीज में आप बेटर हैं आप ग्रो करें जिस चीज में मैं बेटर हूँ मैं ग्रो करूँ ये प्रॉपर मेरे हिसाब से इश्क की डेफिनेशन ही है तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया नहीं वो पुराना नहीं वो किसी बंदे की जो बहुत ही प्यारा है आज भी जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
1: हाँ, है ना करेक्ट करेक्ट
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है इश्क का दरवाजा एक ही उसको सब वहां से सबको गुजरना है तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेर लिखा निर्वाणा से पहले फिर एक किलोमीटर बचा वहां पे आपने कुछ शेर लिखा फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेर लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है नहीं करेक्ट
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा तो सबकी एक रेंज होती है आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना है कि दीवार के उस पार क्या है
0: वो दरवाजे पार हो जाए आदमी इश्क पार हो जाए
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज़मों से याद आया बुल्ले शाह साहब बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें जात और बिरादरी वाली तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपने पास पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से करूंगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब
0: उनके जो गुरु जी थे और भुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी तो वो थे तो एक दिन खाना खा रहे तो भुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया उसके पास क्या रखा है तो बुल्ले शाह की मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है सब अपना ही तो है तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था जो उनका सेक्रीफाइस था जो भी था उनका जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया अब वो परेशान हो गए तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरु जी की गलियों से निकलते थे सब चीज करते थे यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहां से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे तो वहां पे कोठे में चले गए वो तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा, तो बोले पागल वागल कैसे, आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम है, मौलाना, आप नाचेंगे? बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा, मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गया, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है, आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना, पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था, वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा, तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा, तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक ही है, तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला, ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे, जब उतना वो कुछ वक्फा, कुछ साल वो परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो, दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर फोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए, जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ, बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ, अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं, मुझे मर, मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह के साथ में किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या इसी तरह की क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी, जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ कुछ किस लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे है, कुछ किसी लेवल पे
1: है। हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है, कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया? मना, कि मैंने
0: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी ये सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है, कर रहा है, या कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप, आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको चुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम कि ऐ इंसान, तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और, तो ये पैर छूने वाली बात है। मैंने कोई लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल कर दिया आपने वो लिखा।
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा
1: तो थोड़ा गा के सुनाइए। क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ बहुत मतलब
0: वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आपको गुनगुनाना
1: बीच की है कुछ लाइनें, जैसे

0: मत रहो।
1: क्या बात है,
2: ये सब है शायद बहुत ही प्यारे शायद।
1: क्या मतलब, देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना पीना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
2: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है, ये
1: ब्लॉक नहीं,
2: इसके अलावा बात है, मैं समझ गया आप क्या कुछ नहीं, उसके अलावा की बात ही करना, मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्द भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं कर रहा ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ ये, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब की आप बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
1: दोनों नहीं कर सकते।
2: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना।
1: हाँ, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
2: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द
1: नहीं, लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
2: बिल्कुल,
1: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है,
2: सही।
1: फिर उससे प्यार हो गया यानी वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाया हुआ फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
2: एक शायर की नजर जैसे, मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है, मुझे उतना नहीं है शेर, मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
1: का भी भला हो असरार,
2: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
1: वाह वाह,
2: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, इस मिजाज में बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर ले मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
1: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
2: कभी गुस्सा गए तो कभी नफरत हो गई तो कभी ये होगा, कभी बहुत प्यार आ रहा है
1: तो

0: मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे,
1: उससे चूम रहे। बहुत बहुत अच्छी तरीके से।
0: वाह वाह वाह,
1: वही है।
0: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है। जैसे एक शायर थे मजाज, मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर। उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे। लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा। वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको, और पूरी रात बैठ के शायरी सुनाए। तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं। अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ। अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहाँ पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कप कपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ। पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतने धूत हो गए कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में। ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है? हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या मरने के बाद भी शायर उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा?
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है इस, हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता। वही हमको मिला दिया था ना, जब वहां पे दो आत्माएं थी वहीं मिल लेते, क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही। मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया, मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है इश्क। जैसे इश्क भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है, और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इसी दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या।
0: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बी भाई मोहब्बत से, दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग। जब दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
0: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समझ लीजिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करे वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक। मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही जरूर। वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मिलता है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुमने अगर मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
0: हाँ वो तो सही बात है, वो तो सही बात है।
1: तो यही जवाब है मेरा।
0: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते?
1: यार लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं कहीं मजदूरी मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। तो मेरे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
0: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना,
1: इश्क करता तो कुछ नहीं करता था शायद, फिर इश्क करता और कुछ नहीं करता। मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
0: अच्छा,
1: और सबको मैं सबको मतलब सबको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
0: इश्क करें, प्यार करें। इसका मतलब यह नहीं जाके जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything.
0: Yeah, then anything gets bent towards humanity, just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive. आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो We have been created for love. हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शबीर भाई। आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को। तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है ही नहीं।
0: वाह,
1: बहुत खूबसूरत।
0: इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का, कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड। ये बाउंड नहीं रहना चाहिए, या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें। इफ यू हैव समथिंग टू गिव, प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बन के आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते।
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें, प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है जनाब,
0: ठहरे हुए पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय,
1: थैंक यू।

0: ड्रामा।
1: बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM ओन रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। मैम हैज डन हर फैकल्टी एट शी इज इन फैकल्टी ऑफ माया सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी। शी इज अ एमिनेंट क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल वोकलिस्ट। शी हैज अचीव्ड गोल्ड मेडल इन MA इन वोकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड शी इज डिसिपल ऑफ विदुषी अपूर्वा गोखले जी एंड पंडित किरण फाटक एंड विदुषी धनश्री पंडित राय। She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal Sharma Award, Lata Mangeshkar Alankaran Award winner, and awarded a gold medal in memory of Sri R.C. Jal. Performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 2024. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music based YouTuber with 100 and plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhatiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खंडवा से है, मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
2: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं, मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को और ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
1: अच्छा।
2: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है। हाँ। उनका इतना कमांड था। तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए। हाँ। और आज यहाँ आ गए।
1: कोई भी मतलब म्यूजिक हो चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
2: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से। भोपाल में काफी सालों तक वो MLB कॉलेज में जुड़ी रहे। और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा। लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल बाद में मैं कहूंगी कि ये तो एक जीवन ही कम संगीत के लिए, आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है। और चूंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक
1: है,
2: मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लायक है। सो मुझे लगाव भी था बहुत। अच्छा। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाकर दिए थे और सुनती रही मैं। सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो, क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गोखले जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया, और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की वो धनश्री जी से ली है।
1: जी जी। और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट्स विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो बहुत बड़ी विदुषी है। सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, सो हम सुनते हैं इनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुड्डू जी का शुरू से ही
0: पसंद,
1: बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। सो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहां पे उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: से ही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का। खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक कॉलेज ओपन हुआ है। सो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था, जहाँ पर की बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं जरूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
0: सुनना जरूरी, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी
1: जी
0: उसको ज्यादा मायने रखती
1: जी।
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से।
0: देवास। अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम श्रोते आप सुनते रहिए आचार्य 98 FM योर ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसाइपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी। थैंक यू।

0: Welcome after the break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा. लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं. तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत में, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एकांत चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. सो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. सो रियाज बहुत जरूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. सो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत जरूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, और मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीजें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, सो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें, और तीसरा मनन चिंतन करने से. ये अगर कुछ भी चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है, तो उसके बोल अलाप कैसे जाएंगे, ताने कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज है.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट जब मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, सो मैंने म्यूजिक में ही एमए किया. सो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा, कि मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे करियर इसी में करना है. सो म्यूजिक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है. क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. सो मेरी गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक मेरी गुरु अपूर्वा गोखले जी अभी तक यशवंत माले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रही हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कशालकर जी से सीख रहे हैं. सो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया बहुत कुछ, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वही हमारी प्रोग्रेस रुकती है. सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 2015 में मैं सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सोमैया के स्टूडेंट्स, ऐसा पार्ट टाइम था ये सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 years चला और 75+ स्टूडेंट्स थे वहाँ. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा. उसके बाद समीर सोमैया जी जो हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे. सो 2021 से माय सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BPA, MPA, PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब की डिग्री दी जा रही.
0: मैम, आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली, मतलब टेक्निक ज्यादा यूज करते हैं, तो इनके प्रति जैसे हम देखते हैं पुणे में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज्यादा उनका लगाव रहता है. लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है, उसके बारे में थोड़ा बताएं.
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है. लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, सो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया. बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सा रे सा ग म ध नी ध सा. अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा अधिकार, तो ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन राग हमें आज पता चला कि दिस इज बेस्ड ऑन राग हमीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे. और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज. तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे. तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है.
0: बिल्कुल. अभी आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ती होंगी क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: नहीं, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, एक शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है, भाव पक्ष है. इतना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस के तरफ रहता है. लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का, हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के,
0: अच्छा
1: 2 प्रैक्टिकल के. सो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है. तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं लेकिन हमारा ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी. बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब फिर क्रमिक पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं. और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके.
0: और ऑटोबायोग्राफीज भी, कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है.
1: कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े. लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं. आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, वे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या पंडित जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी जी हैं जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है. लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है
0: जी।
1: सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया और उस जमाने में जब ज्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है
0: जी। और आजकल भी ये जमाने में, मतलब 21st सेंचुरी में भी, अभी राहुल देशपांडे जी है, महेश कार्य जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरह बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना ही चाहिए।

0: ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो तो होना ही चाहिए। आप कुछ भी गाएं वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते हैं।
1: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है, वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने
0: बराबर बराबर। सो मेरा यही इंटेंशन है तेजस्विनी जी कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना
1: जी।
0: मैंने इसीलिए 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
1: होते थे।
0: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखाती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है, कोई भी चीज हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। सो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, सो प्लीज आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहे अच्छे, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोस बनाए हैं और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके भी बात की है।
1: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं डॉक्टर सुनीता गंगरडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू।

0: मैम अभी पढ़ते हैं आपके पीएचडी की ओर. पीएचडी में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए. और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं.
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं जरूर शेयर करूंगी. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको एस आई एस कॉलेज एंड षणमुखानंद ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर.
0: अच्छा.
1: सो हमारे यहाँ सुमया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी. सो हमारे यहाँ तब उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए.
0: अच्छा.
1: इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है.
0: हाँ.
1: सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी की वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला.
0: हाँ.
1: और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया,
0: हाँ.
1: तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मजा है?
0: हाँ.
1: हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं,
0: हाँ.
1: तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए. तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को ना प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया.
0: अच्छा.
1: और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे.
0: ओके.
1: तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया.
0: हाँ.
1: और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया.
0: हाँ.
1: कि ये बहुत अच्छा है, और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला. बिकॉज
0: हाँ.
1: हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं.
0: हाँ.
1: तो ये बहुत अच्छी बात है. और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे ये म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं.
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज्यादा रिकवर भी ज्यादा फास्ट होते हैं. तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स
1: डेली
0: लाइफ. वो भी सुनते, अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है. वो भी है. तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशंस है उसका थोड़ा डेमोंस्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर. म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर. तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं,
0: हाँ.
1: उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू ही,
0: अच्छा.
1: मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया.
0: हाँ.
1: और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव है.
0: हाँ.
1: और उन रागों का क्या प्रभाव है. सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज्यादा काम करेगा. सो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसको मराठी गाने, भावगीत, नाट्य गीत, और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ. और जब मैं उनको गाकर बताती हूँ और एक वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है. सो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए.
0: हाँ.
1: और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं.
0: हाँ.
1: और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम.
0: जी.
1: या.
0: हाँ. तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे?
1: जरूर जरूर.
0: तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक.
1: या. जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है. सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है. सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ. जैसे यमन राग की अगर हम बात करें, सो

0: मैम और एक क्वेश्चन अभी अभी हम एंड पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत के, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है. तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के बाद कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं जो मेरा विषय भी है पीएचडी का. सो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनके तरह गाऊं, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है. अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है. मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाना ही एफिशिएंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीजें खुद से नहीं निकलेगी, क्योंकि राग है ना जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. सो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, है ना. तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं या रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है. तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए.
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसी ऑडियंस है. एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए. कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था कि मैं एक चीज गाती हूँ और दर्शकों की नजरों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना. तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाती हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती हैं, या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार कितना. तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसी
0: है.
1: प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खरा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, उनका टेस्ट क्या है. तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या. वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है. और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कि आज हम सिर्फ उसी भावना को लेके नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहता है ना. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है.
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM. और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग.
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, जो मुझे बहुत पसंद है.

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक।

भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

0: हेलो, मेरा नाम सुपर्णा कश्यप है और मेरे साथ आज है मिस मुक्ता जोशी। हम दोनों भी काउंसलर्स हैं। आज हम लोग एंटी बुलिंग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से रफली 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एक्सपीरियंस बुलिंग। एंड बुलिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है, वर्बल बुलिंग हो सकता है, फिजिकल बुलिंग हो सकता है, और आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो साइबर बुलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो होती है आजकल। तो मेरा पहला क्वेश्चन मुक्ता मैम आपसे ये है कि बुलिंग इंडियन कॉलेज में किस प्रकार में दिखाई देता है?
1: थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुलिंग शब्द सुन के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। वैसे तो वो बड़ी है बट वो कभी कभी दिखने में उतनी बड़ी नहीं होती। जैसे हमने देखा है थ्री इडियट्स मूवी देखा है या मुन्ना भाई MBBS देखा है, उसमें कैसे हमें रैगिंग दिखाई जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वैसा होता है तो उसको ही हम बुलिंग बोल सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। बुलिंग एकदम छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, राइट? इसको भी हम बुलिंग के अंतर्गत ही लाते हैं। तो कोई किसी का बोलने का तरीका होता है, किसी कोई कहाँ से आया हुआ है जिनका नेटिव विलेज कहीं और है, उसका मजाक उड़ाना, कास्ट का मजाक उड़ाना, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, उसका मजाक उड़ाना, ये बेसिक चीजें है जो बुलिंग के अंतर्गत आती है। हमें ऐसा लगता है ये तो क्या है, ये तो एकदम छोटी चीज है, एक दूसरे को चिढ़ाना तो नॉर्मल है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये चीज जब बार बार होती है, हमें लगता है हम अकेले हैं जो ये कर रहे हैं, बट एक इंसान के लाइफ में बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज उसके लिए करते हो, तो उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो हम उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो हिस्सा भी बहुत बड़ा बन सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे के बारे में गॉसिप करना, किसी को ग्रुप से अलग करना, उनको आइसोलेशन में रखना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उनको पार्ट नहीं लेना, जानबूझ के उनको नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए मेरे ग्रुप में ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की एक्टिंग करना, ये जो सारी चीजें हैं एकदम सिंपल एग्जांपल्स है बुलिंग के जो हो सकते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो, जो हमें लगता है हम चिढ़ा रहे हैं, बट वो भी बुलिंग के अंतर्गत आता है, वो भी साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमें दिखते हैं यूजुअली कॉलेजेस में। हमें लगता है सब हंसी मजाक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बुलिंग कभी भी ना मजाक नहीं होता। मतलब वो हमारे लिए शायद मजाक होता है जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे, लेकिन जिसका मजाक उड़ रहा है उसके लिए वो कभी भी मजाक नहीं होता। हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हो सकता है ऐसे। और दूसरी चीज ऐसे है कि बुलिंग तब होता है जब कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है किसी और को, सामने वाले को, अपनी अथॉरिटी जताना चाहता है, मैं कैसे सबसे बेहतर हूँ, मैं कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इन चीजों को दिखाने के लिए ज्यादातर बुलिंग देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये बुलिंग सिर्फ फ्रेंड्स में हो या पियर्स में हो, ये बुलिंग कभी कभी ऐसा भी होता है हायर अथॉरिटी के लोग भी लोअर अथॉरिटी के लोगों पे बुलिंग कर सकते हैं। तो बुलिंग अलग अलग तरीके का होता है जैसा मैंने अभी बताया। हमारे इंटेंशंस क्या है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे एक्शंस क्या है उस पर हमें ध्यान देना होता है। तो वही मुझे लगता है कि ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए ये हमें दिखता है अक्सर कॉलेज में होते हुए।
0: जैसे कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताया कि रैगिंग जो एक बहुत हाई लेवल में होता है वर्सेस जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो रोज होती है जिनको हम बहुत इजीली अनदेखा भी कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी बुलिंग के अंडर आती है। और जब कोई एक्सपीरियंस करता है बुलिंग तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है?
1: कई बार मैंने ना लोगों को बोलते हुए सुना है, बच्चों को बोलते हुए सुना है कि ये ना ज्यादा ही दिल पे ले लेती है, या फिर ये ना ओवरथिंक करता है, ये क्या छोटी सी बात है, इसके बारे में क्या इतना सोचना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बुलिंग, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो हम काउंसलर्स हैं, अब हम बुलिंग के बारे में बात क्यों ही कर रहे हैं, तो ये सवाल मुझे काफी अप्रोप्रिएट लगता है कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। और हाँ, जरूर होता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुलिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा चिढ़ाना हो गया, वो एक बैड मेमोरी है शायद किसी के लिए, बट ये कभी भी ना सिर्फ बैड मेमोरी नहीं रहती है, वो दिल पे लगता है। और जैसे मैंने बोला कि जब वो बार बार होते रहता है तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे, किसी के भी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इतना सोचना, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना, अपनी आइडेंटिटी को जिस तरीके से लोग हमें पुकारते हैं उस तरीके से बनाना, अगर कोई किसी को यार तू तो बहुत पतला है बोलते रहेगा तो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, मैं मतलब मेरे में कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, राइट? तो वो आइडेंटिटी बन जाना। ये भी देखा गया है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस उसकी वजह से लूज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑल्दो वो एक छोटी सी चीज लोगों को लगती है, वो इस इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बहुत बच्चों ने हमें ऐसा अभी तक बताया है कि वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग उनके बात करने के तरीके पे हंसेंगे। आप इमेजिन करो कि कोई इंसान जिसको सब पता है, इंटेलिजेंट है, बट वो क्लास में बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उससे भी बहुत बड़ी बात ये होती है कि लोगों को, चलो अभी उनको पता है कि उनको बुरा लग रहा है, उनके साथ बुलिंग हो रहा है, बट उसके बारे में बात करने में भी उनको शर्म आती है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है मेरे बारे में। तो वो ना किसी से बात कर पाते हैं, ना खुल पाते हैं उसके बारे में, कुछ शेयर कर पाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर रह के घुटन जैसे होने का भी चांसेस होता है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपको बुलिंग से आपके ऊपर कोई परिणाम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। बुलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इंसान हो और हर इंसान को बुलिंग की वजह से तकलीफ होने के चांसेस है।
0: तो एक जो चीज आपने बताई कि जब एक कमेंट बार बार किसी को बोला जाता है, उनकी पूरी पहचान ही उस एक चीज में रह जाती है, बाकी अचीवमेंट्स भी कुछ रहेगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और ये फिर बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इन चीजों से कोप करना, कि कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को सपोर्ट दे, कैसे हम इस चीज से उभर के आए। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को सपोर्ट करें इस सिचुएशन में?
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हमें ऑफकोर्स किसी भी इंसान को, हमारे कम्युनिटी का, हमारे आसपास के लोगों का सपोर्ट जरूरी होता है। तो जब मैं ये सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही उस पर काम करना है, लेकिन अगर हमारे साथ बुलिंग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे ख्याल रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे जरूर बता सकती हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि ये आपकी गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान को बुली किया जाता है उनको लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये समझिए कि कोई भी बुलिंग डिजर्व नहीं करता, ना आप ना कोई और, राइट? और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सैड, एंग्री, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो तो वो भी बहुत नॉर्मल है। अपने इमोशंस को रोकिए मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मजाक है, तुम्हें इतना क्या हो रहा है, इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है, और हमें लगता है कि हाँ हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और हम अपने गुस्से को अंदर दबा देते हैं और वो इमोशंस दबाने की वजह से और ज्यादा अंत में उभर के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके बारे में किसी से बात करो, जो भी, जिस इंसान को भी आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो। आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बात जरूर करो। आपका जो इमोशनल एक आपको लोड फील होता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा कम होने में उससे मदद हो सकती है। तीसरी जो चीज है, अगर आपके साथ होने वाले बुलिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, उसको लिख के रखते हो कि ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, किसने किया था, सिचुएशन क्या था, तो अगर आप कभी आगे जाके कंप्लेंट करना चाहते हो, इसमें ये चीज बहुत काम आ सकती है कि आप उसको कंप्लेंट भी आगे रेज कर सकते हो। हर कॉलेज में कंप्लेंट रेज करने का तरीका होता है, कहीं भी देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो आप उस पर कंप्लेंट रेज कर सकते हो। फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका ढूंढना। मुझे पता है कि ये बहुत आसान नहीं है, और जब कोई ऐसी चीज हो रही होती है, स्पेशली आपके साथ बुलिंग हो रहा होता है, तो उस समय हम अपने आप को डिफेंड करना, उतनी ताकत लाना उतना मुश्किल है, लेकिन अगर आप में वो ताकत आती है, आप ला पाते हो, तो जरूर अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। सामने वाले को सीधे बताइए कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे पता है कि उसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो परिणाम अगर आपको लगता है कि आप भुगतने के लिए ठीक है आपके लिए, तो आप ये जरूर कीजिए। सामने वाले को ये बताइए कि ये ठीक नहीं है, मैं ये सह नहीं सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत दुखद है, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बताने से एटलीस्ट ये जायज होता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप इस चीज को रोक पाओ। और आगे जाके अगर कोई बोलता है कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने ऐसा किया, तो तब आपके पास एटलीस्ट ये है कि आपने बोला है लेकिन फिर भी वो रुके नहीं है। फाइनली अगर आपके कॉलेज स्कूल कैंपस में कोई सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे कुछ कॉलेजेस में एंटी बुलिंग कमिटीज होते हैं, एंटी रैगिंग कमिटीज होते हैं, तो ऐसे कमिटीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने लोग ढूंढो जो अपनी बातें सुनते हैं, है ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड फाइनली अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, हो सकता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, तो एक कुछ भी नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हमारा ख्याल रखने के लिए एटलीस्ट हम एक जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। कोई लोग वॉक के लिए जाते हैं, उनका मन शांत होता है, कोई लोग जर्नल करते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं अपने ख्याल, अपने इमोशंस अलग निकालते हैं बाहर, मेडिटेशन करना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं उनके पास भी जाने का एक ऑप्शन हो सकता है। और ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, हर कोई जिंदगी में स्ट्रगल करता है, लेकिन आप जब हेल्प मांगते हो या किसी से हेल्प लेते हो, वो आपको स्ट्रांग बनाता है। तो बिल्कुल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं है।
0: थैंक यू मैम, ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आगे रखी कि हेल्प मांगने से आपको कोई कमजोर नहीं बनाता है, तो ये एक बहुत जरूरी मैसेज है जो हम आज पहुंचाना भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। और एक और चीज, जैसे आपने बताया कि सपोर्ट का जिम्मेदारी उस इंसान पे नहीं होना चाहिए जो बुली हो रहा है, ये एक कम्युनिटी जैसी एनवायरनमेंट हमें तैयार करनी है कि जहां हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें जो बुली हो रहा है, हम उसको कैसे सपोर्ट करें?
1: कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं क्या ही कर सकती हूँ, और यही जो सोच है वो हमें कुछ करने से रोकती है। तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप छोटा सा भी स्टेप लेते हो तो वो भी एक सपोर्ट के तरीके से एक इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब बुलिंग हो रहा है तब जाके झगड़ा करना, इतने बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि बस अगर कोई बुली हो रहा है तो बाद में जाके उनको उनसे बात करना, उनको बताना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ। इतनी चीजें सिर्फ उनको बताना और उनको ये महसूस कराना कि उनके साथ भी कोई है जो उनको सपोर्ट करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। प्राइवेटली उनके साथ जाके एक बार चेक इन करना कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये चीजें पूछना, इनसे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं और उनका उसमें कोई ओपिनियन है, वो आपको कहानी बता रहे हैं कि आप उनके साथ क्या हुआ, तो उसको बिना जज किए सुनिए। उससे क्या होता है कि हम ना थोड़ा क्या, हमें ऐसा लगता है कि हमें सही या गलत में जाना चाहिए, सच या झूठ में जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। वो इंसान को आप सिर्फ सुनोगे एकदम शांत मन से बिना किसी जजमेंट के, तो वो भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। अगर आप इतना कर सकते हैं कि अगर कोई बुली कर रहा है और उस बुली को आप साइलेंट कर सकते हैं, वही के वही बोल सकते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, या फिर यार दूसरों का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है, ऐसे अगर आप उन बुली को भी बता सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बोला कि आप जाके एकदम झगड़ा शुरू कर दो। सिर्फ वो सिचुएशन जब हो रही होती है उसको बीच में तोड़ना, उसको इंटरप्ट करना, उतना ही अगर आप कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुली हो रहा है तो उनको बोलना कि अरे छोड़ना, चल मेरे साथ चल, ऐसे बोल के उनको वहां से लेके जाना ताकि वो और आगे बुली ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये समझना भी जरूरी है कि जो बुली कर रहे हैं वो भी कभी कभी अपने ही खुद के मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, उनको भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तो कई बार कन्फ्रंटेशन के जगह वो सिचुएशन को काम करना ज्यादा असर करता है। तो इस ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम या हम कोई भी अपने आसपास अगर बुलिंग हो रहा है तो उसको सपोर्ट

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे पेटों के पाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी पाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नज़म क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: फुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
2: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
2: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
2: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना साथ दिया, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते वक्त तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीनना चाहती? मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखती है।